क्षण तथा दिन तक कर्णाटकम निसरिनी सरिबा सन्निद पमरिद दशम क्षणम धेमित धेमित कठिंगण सुत दिन्ता सरिम पन्निद मपस मगरि सरि दीदप तदक्षम तदक्षम तपस निदप करि तत्त्वम तन्न जन्तकम सनिद पद मगरि झण्डताम निसरि जन्तकम हरिमप ரிமபனிசா தத்திங்கின்னத்தும் பாமகரி நிதரிகமகரி தரிமபனிசரிமபனிசரிம